श्रोतेओ नमस्कार। हरिभक्ति पारायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरिभक्ति पारायण भानुदास महाराज देगलूरकर, धुंडा महाराज मठ, उत्पाद गल्ली, पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरिभक्ति पारायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपाशीर्वादानं सालंकृत।

सुजन हो चढ़व नारद भक्ति सूत्र शांति रूपात परमानंद रूपाच यथार्थ असा है स्वयं प्रमाण रूप असलेली भक्ति शांति स्वरूपा आणि परमानंद स्वरूपा।

तुझे बाहों में ले जाऊंगा, एक चलती फिरती अग्नि से सीने की आग बुझा लूंगा। एक सपना देखा करता

ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा गोरी हो गोरी, फिर न कहना आवाज न दी प्रेम कर ले, ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा।

गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुः।

दे च प्रथितः पुरुषोत्तमा यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नग एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु

के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं। तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है। दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लोबान चल रहा है।

दाने पकते हैं तो झुमकों की तरह बोलने लगते हैं कोहिस्तानों पर, बेलें गिरती हैं छतों से, मौसमी पेड़ है मौसम में उगा कर।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांची विशेष मुलाखत आपण ऐकू शकणार आहात विनोबा म्हणे या कार्यक्रमात। संवादिका आरजे श्रद्धा। प्रसारण दर गुरुवारी दुपारी 1 वाजता आणि पुनःप्रसारण दर रविवारी दुपारी 4:30। तेव्हा ऐकायला विसरू नका शिक्षक सहाय्यक कार्यक्रम विनोबा म्हणे।
3: कार्यक्रमात हे गीत ऐकूया SH बिहारी यांचा नन्हा शिकारी या चित्रपटामधलं। गीताला संगीत आहे बप्पी लहरी यांचं। आणि हे गीत ऐकूयात मुकेश आणि सुषमा श्रेष्ठ यांच्या आवाजात।

0: वालों से कहो मत वालों से चपटना यालों से अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से
1: अभी तो कितनी दूर

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।